0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: सरकार दी आमद मरहबा।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामाते आहो फगां और भी हैं। तू शाही है परवाज

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: at 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Har Maah Munafa Aamdani Mein Izafa Bank Al Habib Rishta Bharose Ka.
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:23 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है। तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा जो लोग इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक में, जिस भी यहाँ पे जा रहे हैं आपको कहेंगे हम सेफ सेफ जर्नी पर अपनी गाड़ियों और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा आपने कंट्रोल में रखी और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफर के खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल के खुदा खैरियत मतलब वो तमाम तो लोग जो लोग सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मेरे यहाँ पर डांस खुद है आप बजे सुनिए। उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। जो लोग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ बेटर कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेष। इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शोबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों में पुरस्कारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिहिम अहलन वसहलन मरहबा। बखैर अहले जी आया ने सर बिस्मिल्लाह बाजो शामी हाँ एंड वेलकम टू जिंदगी गुलजार है। प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को और वो सारी बातें प्रोग्राम मुझसे करना चाहते हैं सब करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम को पहला गाना सुनेंगे, आगे चलेंगे स्टेज चेंज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सक्खर FM 88
1: सक्खर की आवाज। अच्छा अवां अच्छन वारन का परेशान आयो पेश आहे आर्ट क्रीम हेयर कलर पंजे पसंदीदा रंग सा पंजो अंदाज बनायो वधिक दिलकश ऐ वधिक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या की खास मौके जी तैयारी हर लम्हे पंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्ट क्रीम हेयर कलर सा पंजी शख्सियत में आयो नव रंग नव अंदाज ऐ नई ताजगी अडे पंजे वेजे स्टोर ता आर्ट क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐ पंजी खूबसूरती के जो नव रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान की समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: छात्रवाज ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन तो कोई तवान आए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाखिलाओ जारी आहिन चार सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD 3 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CMW CNA खास सहूलतों स्कॉलरशिप मौजूद 3 सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री जरे तो DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखिला फीस और फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया इतने तवा के मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम जदीद लेबोरेटरीज मुकमल लाइब्रेरी तजुर्बेकार फैकल्टी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप ऐं फिजियोथेरेपी OPD जी बेहतरीन सहूलत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे याद रखो सीट्स महदूद आहिनि तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि हिते मेडिसिन्स OT हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबतो 07115635642 ऐं 03108166111 44 सालन जो तजुर्बो हजारे मरीजन जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद 44 सालन जे वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज जोड़न जो सूर मैदे में जलन गैस बदहजमी तेजाबियत गुर्दन जी पथरी बवासीर बे औलादी वारन जो किरण गंजपण फॉलेज खारिश ऐं बियन मुख़्तलिफ़ सेहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसिर इलाज फराम करे रहा है आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर नए पिंडवारी पुल के सामू PSO ऐं शेल पेट्रोल पंप के विच में टाइमिंग छंछर का खमीस सुबह 10 बजे का शाम 5 बजे ताई अपॉइंटमेंट ऐं वधिक मालूमात लाए हियरी राबतो करियो 03-26-22-00-440
0: GA सखर FM 88
1: सखर की आवाज।

0: आगे क्या मुझे तो ये कहूंगा जी
1: ओके
0: और भी मेरे दोस्त हैं फराज भाई है शक्कर में जवार भाई है शक्कर में और ये क्या उसको कहते हैं लुंड ताहिर लुंड और उनके वाले साथी को सलाम कहूंगा और जहां तक मेरी आवाज जा रही है सबको सलाम
1: थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताते जाएं कि इस गाने का टाइटल क्या है और सिंगर कौन है।
0: अरे नहीं सिंगर तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत पुराना सॉन्ग है। टाइटल है जी अनोखा लाडला।
1: अनोखा लाडला चलिए मैं इसको सर्च करती हूँ मुझे मिल जाता है तो मैं प्ले करती हूँ। ठीक है थैंक यू सो मच अला हाफिज़
0: जिंदाबाद।
1: थैंक यू स्वीट कॉलर। अच्छा मुझे एक कॉलर ने रिक्वेस्ट की थी इस गाने की तो ये वाला गाना सुनते हैं और ये वाला गाना सुनते ना हम एक और गाने की तरफ चलेंगे। जिन्हें सुनाया मैं उसको सर्च करने की कोशिश करूंगी। ठीक है

ओके जी, इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे और नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं साहिर अली बग्गा की आवाज में। अच्छा रशीद अहमद, आपका गाना मुझे नहीं मिल सका अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला प्ले कर रहे हैं और ये वाला प्ले करके न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: Express PM This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
4: Jildi Allergy aur Kharish ke liye mufeed hai
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: ब्रॉट टू यू बाय
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
8: सिक्योरिटी बढ़ाने ताई जरूरी है रिफाइनरी अपग्रेडेशन लाइ बे जल्द मुहिदो थी तवानाई सेक्टर जे डी रेगुलेशन ते भी कम थी रहो है शाम जो परदेही वजीर ख्वाजा असद हसन पाकिस्तान के दौरे से पहुंची वो अज पाकिस्तानी इख्तियार से मुलाकात कंदो असद हसन नायब वजीर आजम इसहाक डार के दावत से पाकिस्तान पहुंतो है

कड़ी यासीन जे ॻोठु बाकरशाह में हथियारबंदनि जी फायरिंग, धनार नौजवान क़तल, हथियारबंदनि बकरियूं चाढ़ींदड़ 30 वरियनि जे नादिर मारफाणीअ खे फायरिंग करे क़तल करे छॾियो। नौजवान जो लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले, घर में रोजराड़ो।

0: ऐं ॻेड़ी खेरो में वेगारे केनाल मां निकिरंदड़ मुख़्तलिफ़ शाखनि जे आबादगारनि जो पाणीअ कोट ख़िलाफ़ धरणो। सिंध बलोचिस्तान ढंग वेगारी पुल वटि धरणे सबब ट्रैफिक मुअत्तल थी वई, गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वयूं। आबादगारनि पाक किताब खणी दाहींदे चयो त ताज़ा शाह कीदन शाह लोन माइनर ऐं सेरवा गुज़िरियल 15 ॾींहनि खां पाणी न आहे, पाणी फराहम कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हूं तो अस बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असाज बार पैर पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां बार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: DFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको

0: पोलियो जो ॾींदासीं उनमें का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं। इससे वैक्सीन से की उम्र अगर तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। आपका बच्चा इस मुहिम में रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 6 पे।
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 2 p.m. They talk to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान.
5: राफी सुकुमती नजर सानिया जी दरख्वास्त पेपर बॉक्स मुकमिल न हुजण जो एतराज लगाए वापस करे छड़ियो. ब ॾींहं अॻु सुप्रीम कोर्ट पीटीआई वानी खे इलाज अल्सनल अस्पताल मुंडण बाद हुकूमत दाख़िल कराई हुई. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान ख़िलाफ़ जंग जो ऐलान. अमरीकी सदर चयो आहे त ईरान खे मुआहिदो करण जो मौको ॾिनो हो पर हू फ़ाइदो न वठी सघियो. हाणे ईरान ख़िलाफ़ अहिड़ी तबाह कंदड़ मुआशी जंग तरफ़ वञी पिया जेका अॻु कंहिं बि मुल्क तेल जे स्मगलिंग, तेल बरदार जहाज़नि, रक़म जी मुंतकिली, करंसी जे इस्तेमाल ऐं फर्ज़ी कंपनियुनि जे नाले ते जहाज़नि जे रजिस्ट्रेशन जहिड़ा जंग

0: गवर्नर हाउस बहरा पंजे डी में धरण जारी। जमायत इस्लामी कफर खां त महंगाई के इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोलियम लेवी खिलाफ आहे। पेट्रोलियम लेवी जे नाले ते शहरनि ते धाड़ो। मौजूदा सूरत हाल में पुरअमन सियासी मज़ामत अमी हल थी सघनि था।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे सूबो, त तव्हांखे वैक्सीन जे लॻी 10 साल।
3: पाकिस्तान की शादी मेहरान की

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अभी बुधोप्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

दुश्मनन जा सदाम सोलंगी चए। शहर गौसपुर का फरमाश असो प्री प्यारो भा अब्दुल सतार भयो मिस्त्री नूर हसन बिजारानी करमपुर का एहसान नसीरानी होटल वारो गुलाम मुस्तफा नसीरानी होटल वारो कुर्बान मलिक होटल वारो अब्दुल हई मलिक होटल वारो हनीफ मलिक होटल वारे की फरमाश शहर सखर का शाबान लाखे की फरमाश वो जेड़ी पांजी यारिया एड़ी न कैजी यारिया उस्ताद निजाकत जेड़ी दादन फकीर जी खान कोरार जी यारिया पांजी बेड़ी यारिया।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधनि।

0: ना रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीम अल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बिनतन सामवे केतरा ही भेरा चयो है हाने भी चवा तो अक्षन मामला गालन जरिए हल करे तो जी मुआशी तरक्की जमहूरी हयाती मिली सके जरिए मौजूद इजलास में पीटीआई भाजपा की काबिनेट जेके बारे हुकूमती अपील वापस करे छी जरिए मौजूद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार आफिस हुकूमती नजरसानी की दरख्वास्त दी जेर अस्पताल मुंतकिल करण ते हुकूमत खिलाफ तो इन अदालत पीटीआई बानी के इलाज अल शफा हुकुम डिनो हो जैं में अपील दाखिल।

Pinky and then Casey Gudni and Molo Pinky video link Zari Adalat me page Sadas Bhav Mohammad Nasir Asim Bhaviri Tey Adalat Para Kavar Joizar Adalat Para Me Zamanat Nathan Joga Girtari Warren Jari Mohammad Nasir and Asim Bibi Kigirtar Chikan Johukum गढ़ी यासीन के गोद बाकर शाह में हथियारबंदन की फायरिंग धनार नौजवान कत्ल हथियारबंदन बकरियों चारींदड़ 30 वरियन के नादला रोज

0: पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तेंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असां वट अल्लाह ताला जी एक वड़ी नियामत आए। सेहत जे माहौल में पोलियो मौजूद आए। ये पोलियो मुदाफ़ा अज़मी आए।
2: बुधो प्या जिए हैदराबाद मटियारी सिंध जो आवाज़।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों तो अस बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पैर पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जो बेहतर थे थी। हाँ जो कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदी उन में का भी सुई इस्तेमाल नी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जे बार के करा तो जी असो पाकिस्तान पोलियो जड़े मूजी मर्ज में महफूज रहे।

0: कल 243 तहत कंहिंखे बि मुक़रर रिटायर्ड या बरतरफ़ करे सघंदो। इस्तीफ़ा मंज़ूर या रद्द करण समेत मुलाज़िमत खे बरकरार रखण जो इख़्तियार बि वटसि हूंदो। एक्ट में दरपेश कंहिं बि मसइले जो सदर पाकिस्तान अज़ालो करे सघंदो।
1: पाकिस्तान पहुतल शामी परडे वजीर साद अहसन की नायब वजीर आजम इसाक डार से मुलाकात बितरफो सहकार वधाने ख्याल की डे वट परडे ऑफिस मूजिब पाकिस्तान ए शाम विच में गडियल दिलचस्पी वारन शोबन में सहकार से भी गाल बोल कई वही। शामी परडे वजीर पारा बिन्हीं मुल्क विच में बहिराणन लागापन के पुख्तो करण जो भी अजम। मलेशिया के घरू वजीर पाकिस्तान मूवमेंट ए इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स जो दौरों भी कयो। खेस गार्ड ऑफ ऑनर में पेश कयो वयो। शहीदन के यादगार से भी हाजिरी।
0: सिंध के सीनियर वजीर पारा रावलपिंडी के बरसात मुतासिर से हमदर्दी जो इजहार। शर्जील इनाम मेमन है तबाही मचाईदड़ बरसात सबब दुखे अफसोसनाक सूरत हाल पैदा थी। वो बरसात मुतासिर लाए दुआगू है। कदें भी अड़ियन कुदरती आफतन के सियासी रंग न डनो वो। माजी में कराची अंदर कुछ कलाक की बरसात की भरपूर मीडिया कवरेज कई वही पर सागी मीडिया रावलपिंडी की सूरत हाल के नजरअंदाज कर। पंजाब इतलात वाली वजीर उस्मा बुखारी जो चवण है पंजाब के कें भी शहर में मीह वसंद है कुछ कलाक अंदर पानी निकाल थी वेंद है। सिंध में घणो मीह वसण से केतरा ही डी पानी बिठल रहे तो।

0: कराची में पीआईडीसी सिग्नल वट धरणो हणी वेठल वकीलन ऐं हुकूमती वफद में ॻाल्हियूं कामयाब। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, मोहम्मद अली मलकाणी ऐं मुर्तज़ा वहाब धरणे वारे हंधि पहुची ॻाल्हियूं कयूं। धरणो ख़तम थियण खां पोइ पीआईडीसी सिग्नल खां वज़ीर आला हाउस तरफ़ वेंदड़ ट्रैफिक बहाल। वकील त सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। प्रिया कुमारी ऐं ॿिया ॿार बाज़ियाब कराया वञनि। एस पी एस सी जे मुतासिर उमेदवारनि सां इंसाफ़ ऐं सिंध जे पाणी ते धाड़ो बंदि कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क PTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मैं नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जी एफ एम 91.6।
1: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: अक्सर मान जो सवाल हूं असा के पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई चौथी दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ, हाई रिस्क हुंदा आन। उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क आ, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंजे करे तवा के वैक्सीन जे लाए उम्र जी हद कोने, कैं जगह ते वैक्सीन, कैं उम्र ते पोलियो लगी सके तो, कैं उम्र ते वैक्सीन करे सके तो, रेशियो वधी क 10 साल के घट आ। तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सबनी के बूस्टर डोज लगराए।
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद है। तो इन आसान जवाब यो हि बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक वड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ई पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ई बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: नहीं थे। हाँ,
1: ये गोहर के बारे में क्यों सोच रहे थे?
2: ये लड़की जोया कब से तुम्हारे हवासों पे छा गई है?
3: She makes me happy. जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं अपने आप को एक जिंदा इंसान महसूस करता हूँ।
4: तुम मर्दों के पास बाहर एक यही एक्सक्यूज क्यों होता है?
5: मैं तुम्हारा नहीं, सिर्फ हालात का मुजरिम हूँ।
1: तुम्हारा नाम क्या है?
6: समीर।
0: समीर।

0: जैम। दिस जैम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आए आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो। एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस कर बनाए और दे आर मिरेकल ग्लो। आर्च
2: गुंदा आवाज की डोर से बंधा हुआ।
0: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जब दमा तो फिर कुछ शब्द उसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरे को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: अब लग गई मेरी खुशियों को।

0: भाई को मारा है तुमने।
1: तुम नहीं जानती कि बर्बाद कर सकता है, सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: खाने को ढूंढना चाहता है। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं दूंगी।
1: दिल से तो नहीं निकल सकते, जिंदगी से तो निकालना पड़ेगा।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आहे. अॻु बि चयो ऐं हाणे बि चवां थो त अपोज़िशन सां ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं. अपोज़िशन मामला ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करे त जीअं मुआशी तरक़ी ऐं जमहूरियत खे हथी मिली सघे.

0: It's 9:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by
3: अगर खुबार्श अपनाई एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असा बार बार पंजे बारन के पोलियो या कतरा छो प्यारी बार पे ही पोलियो या कतरा। मुंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो या कतरा पीण सा बार जी इम्यूनिटी जका वा बेहतर थिए थी। हाणे जका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
5: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल फासले बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद एफएम 91.1 सिंध जो आवाज सिंध जो आवाज
1: पीचेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: डैग आम मास एतमाद मयार
3: नाम लेकर तलब
4: जीए एफएम
5: ब्रॉट टू
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

इलाज दौरान पीटीआई बानिया जी अस्पताल राजा नासिर अब्बास सेहत जो ख्याल रखना हुकूमत जी जिम्मेवार कोर्ट लगे दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते अमल करके अस्पताल मुंतकिल कयो वफाकी वजीर तारिक पजवान त सुप्रीम कोर्ट जे फैसले ते मुकमल अमल कयो वेंदो घुर्जे उहो सरकारी अस्पताल में न आहे त खे शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पीटीआई बानिया खे इलाज लाइ परॾे मोकिली

0: working with suicide. I love someone, but as a whole people.
1: Network for TN News.
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
4: GAFM 91.6।